0: agriculture, steel, maritime cooperation and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said the India-Indonesia partnership begins today.
1: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetra mein mahatvapurn kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People-to-people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the conferment of Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon Prime Minister Modi is a matter of immense pride for all Indians. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kokje and Sameer Dave its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July the 26th, 2000.